दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म हुए प्रभ मेरा, एह बिनंती सुन प्रभ मेरे, देहे नाम कर

के चरण धोए धोए पीवा। सुकहुटल गुर सेवीऐ हंस सहज सुभाए, दर्शन परसें गुरु कै, जानम मारन दुख जाए। दर्शन परसें गुरु कै, जानम मारन दुख जाए। धन्यवाद।

0: राख न सकै कोई।
1: आखण पाए हो जाने जीतिया मखाए।
0: आपे जाने आपे दे आखे सेपे के।
1: जिसनो बख्शे सबसा ला नान पातशाही पातशाह।
0: अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये मूल भंडार।
1: मुलड़ा जाए मूल पा।

0: पंडित पंडित कीसर जुग जुग वेदा नाले
1: मोहनी अमर मोहन सुरगा मछ पयाले
0: गावन रत्नों पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले
1: युद्ध महाबल सूरा गावे खानी चारे
0: गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे
1: तो दोनों गावे जो दुध पावन रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से मैं चितना आवन नाने क्या विचारे
1: सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई
0: भी होसी जाए न जासी रचना दिन रचाई
1: रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जिन उपाई
0: कर कर वेखे कीता अपना जिब तिस दी वडियाई
1: भावे सोई कर सी हुक्म न करना जाई
0: सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई
1: दस दो शर्म पर झोली ध्यान करे भूत
0: किन्हा काल कुवारी काया जुगत डंडा पर
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत
0: आदेश से आदेश आद नीला नाद नाहत जुग जुगे को बेस
1: भंडारण।

0: गंगा बाबांगत मत पार गुण गण उदार
1: मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत
0: कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणांडन बड
1: श्री संत वै प्रसाद
0: गोविंदी मुकंदी उदारी अपारी
1: हरिम करिया ने नामे अकामे पचंग प्रयात
0: चक्कर करता जत चक्कर हारता जत चक्कर दानी जत चक्कर जाने
1: चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर पाती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले
0: चक्कर वासित चक्कर वासित चक्र माने चक्र दान
1: है
0: सत्र न मित्र न भरम न पितर न कर्म न काय जन्म जाई
1: न मित्र न प्र है पवित्र पर दिशा अदिशा अदिशा अग्रिशा भगवती संत व प्रसाद करते
0: आशी दिशा के आप च पिसा के आ गंज कर्म के आ पंच भरम
1: लोक के आदित सुख के अवधूत वर्ण के विभूत
0: करते राजन प्रभंग धर्म तुझे के आ सुख वर्ण के सर्वा भरण
1: है के
0: शतरंग क्षत्रिय
1: है के
0: ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुपे याद देव के आप भी चित्तन विहीन के कैदी

0: है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है।
1: सर्वत्र माने कि सर्वत्र दाने कि सर्वत्र गाना कि सर्वत्र पौना है।
0: सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है।
1: सर्वत्र दीना कि सर्वत्र लीना कि सर्वत्र जाओ कि सर्वत्र पाहो।
0: सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है।
1: सर्वत्र हंता के सर्वत्र गांता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी।
0: सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है।
1: सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिस है।
0: सर्वत्र मान्य है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र
1: के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है।
0: सर्वंग कली में के परमंग फही में के आकल हला में के साहेब
1: प्रभुक्त प्रभा सुदा है।
0: स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व
1: साज है। सलाम काम निर्वास रूप गाद अनूप है
0: ओंगाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: त्रिवादे गंजे अगादे सुगम सर्पागी सर्वानुरागे
0: त्रिपुक्त स्वरूप है छिज है छूत है के नरकंक पर नास है पृथ्वी और परवास है।

0: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वबारण है
1: त्राणा जाके करण मनमाने जग जाने है
0: सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है
1: संग पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
0: मंडस है खल खंडस है परते

0: नायक है, कल कायक है,
1: करुणालन प्रणायक है, सर्पायक है,
0: पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,
1: कृता सर्वा कृता कर्ता कर है, हरता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुचंग पे आत
1: नमो सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो अंधकार नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे
1: शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: नमो ज्ञान ज्ञानी नमो भोज भोजे नमो पान पाने
0: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बभूते
1: अलंकार अलंके नमो।

0: गवायो।
1: वासुकियों बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह बतायो।
0: सच कहो सुन ले हो सुबह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
1: काहुल पाहन बूट तरयो सिर काहुल लिंग।

0: निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते कन्नी कमाणी
1: कूड़ की सोई पहुंचे नाही मनसा सच समाणी
0: जन्म रतंजनी खटिया भले सेवन जारे
1: कै नानक जिन्मा निर्मल सदा रहै गुरु नाली
0: जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले
1: गुर कै चरण हृदय ध्याए अंतरात्मा समाली
0: आप छड सदा रह पढ़ने गुरु बिन अवर न जाने कोई
1: कै नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए
0: जे को गुर ते बेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै
1: पावै मुक्त न होर तै कोई पुछो बबी किया जाए
0: अनेक जूनी परम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए
1: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए
0: कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए
1: पावो सिख सतगुरु के प्यार हो गावो सच्ची बाणी
0: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी
1: जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी
0: पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारग बाणी
1: कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी
1: कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी
0: हर हर नित करे रसना कहया कछु न जानी
1: चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैर वाणी
0: कह नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी
1: गुर का शब्द रतन है हीरा जित जड़ाऊ
0: शब्द रतन जित मन लागा एहो हो आसमाओ
1: शब्द सेती मन मिलिया

0: मन चाओ प्या प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया
1: हर गाओ मंगल निसखी है सुख दुख ना व्यापय
0: गुरु चरण लागे दिन सफागे अपना पिर जापय
1: अनहत वाणी गुरु शब्द

सिमरन उदरे मूचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बूझै, प्रभु कै सिमरन सबके सूझै, प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदमाए समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवाण, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बे मोहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्ला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अणद कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे अरनेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु का सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विघासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख

वेद उपाय अर सिमरन भय सिद्ध जति दाते अर सिमरन नीचाऊ कुंट जाते हर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर कारण करना अर सिमरन कियो सगले अकारा अर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै दै केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवे अत पारी अर को नाम किन माए उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह को नाम कोट पाप पर हर है गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सकल सृष्ट को राजा दुखी हर का नाम जप तो हुए सुखिया लाख करोरी बंद न पर हर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तिक न बुझावे हर

0: लेवापन कर कर्म।
1: तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी दास।
0: तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हुए सो।

ब्रह्म ज्ञानी हुए अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्धोप जैसे सूर सर्प को शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान जैसे राय रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जी जो वसुद्धा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी के गुनाओ नान जो भाव का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तार ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्चा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नान जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सल किरीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी कृषि बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो मा ब्रह्म ज्ञानी का नाई तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के सफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी के करंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम उधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी ओ बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख साय निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी संगीता ब्रह्म ज्ञानी के चिंता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप

ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माँ है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना है भेद, ब्रह्म ज्ञानी के सुधा दे सब, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए अदा कर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मुझे कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सदा श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म

प्रकृतनी तबन मुख किसको गणे जब एक रकम पार तब नरक सुर को गण उतार जब निर्गुण प्रसाद स्वाय तब शिव सकत कहो कि तठाए जावे आप अपनी ज्योत रह तब कर्ण निर्गुण कत डरे अपन चलता करण यार नानक ठाकुर रकम पार अपना शिशु के अपने आसने तब जन्म मरण को का विनाशने जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किसोए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चतुर्गुप्त के पोछ दलेखा जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन चढ़े कुण बंधन भा दे अपना पापी जर जा नानक अपन पापी पर जा जय निर्मल पुरुख पुरुख पतो होता तय निर्मल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कुमान कौन मान जय स्वरूप केल जगदीश तय छल चित रगत कहो की स जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसी भूखों त्रुपतावे करण क्राउन करने हार नानक करते कान है सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई जन सर उकला पे प्रवीणता वेग तेव कह को चीन जब अपने आप आप उतारे तो सगन सगन का विचार जे अपने उचने अपने आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है जेरा विस्मन विस्मरा विस्माद नानक अपनी का जन वाप जय चला चे फे समाय वंक से व्याप तुमाय आपस को आप देश तय गुण का नाई प्रवेश जय कह के भगवंता तय कौन चिंतक शिला के चिंता जय अपने आप आप तारा तय कौन कथे कौन सुन यारा बहु बिंदु ते उचा नानक आपस को आपे पहुंचा जा प्रच प्रपंच कार तय गुण मैं किनो विस्तार पाप हंता पई काल को नर को सुरग मिसाल हाल जाल मै जंजाल होमे मोह भरम पै भार दुख सुख मन पवान प्रकार के विख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचा तो नानक कह जय भगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप दू पाक आपे तनि उनकी शोभा नु बणी आपे कौते ग्रहण चो जा पे रस भोग निर्जोग जिस भाव तुझे अपना लावे जिस भाव तुझे खेल खिलावे बेशुमार थाक न तै तो लै ज्यो बुलाओ त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानके को बसरिया दूजा कह दृष्टा रसपदे आप कथे आप सुने हार आप का विस्तार जात इस बात से छुपाए अपने भाने लै समाए तुम ते भिन्न नहीं कुछ होए अपन सुख सब जगत परोए जाको प्रभु जी आप जाए सतनाम सोई न पाए सो समदर्शी तत् कबीता नानक सर्वश्रेष्ठ का जेता जी अंतर सबता के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोय न मारे सोम सुमन सारे तिस तयावर कहाँ कोई जाए सब श्री एक रंजन आए जी की जुग जाके सवा अंतरवार जानु सा गुण दान बेंत वार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूरे दया सौर कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रह व्याप प्रतपाल जिन बो भात जो जो जो रचे सुत हित आ जिस भात ले मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर माने आ करण हार नानक के जाने जन लग करे के ना तिस की आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा अपने आए हुकुम बूझ परम पद पाए स्थिति प्रणय विचार जाके मन मस्या निंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजे गुर के पैर लोक सुखे प्रलोक सुहैले नानक हर पवे आपे मेले सत्संग मिल करुणानंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दृढ़ दे का करो उधार अमृत वचन हर के गुण गाव प्राण तरण कै सुहाव आठ पर वेखो नेरा मिटे के अनबिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय वसाओ मन छे नानक पल पावल पल दर सुहा राम नाम त्रोड़ पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन वसे ते साज परिखिया मन तन नाम चपले बुलाए दुख दर्द मन ते बोझाए सच व्यापार करो पारी दरगह निभे खेव तुम्हारी काटी रखो मन माए नानक बहु न आवे जाए तिस ते दूर कहाँ को जा विराखनार्थ है निरखोज पै सकल पो मिटे प्रभु कृपा ते प्राण ही छुटे जिस पर राखे ते नाही दुख नाम जोत मन हो असुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक तै के कारज पूरा मतपुरी अमर जाके दृष्ट है दर्शन पेख दुर श्रेष्ठ है चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर रूहतान से वैसे पुराण अंतर जामी पुर प्रदान जिस मन वसे जोत निहाल ताके निघने आवत काल अमर भय अमरा पद पाया सा संग नानक कर तै सलोक है ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर बिना सर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपद संसंग अंतर प्रभिठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्री एक कटमायन करंग नानंदिष्टाय नौन दमृत प्रभु का नाम देहि मैं सब सराम सुन समाधन तय नाद कह न जा चरु समाध तिन देखे इसे आप दिखाए नानक थी जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर आनंद घट घट ब्याह प्रया पकवान
ਧਰਨ ਮਾਇਆ ਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਸਭ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਣ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਲਮ ਜੈਸੀ ਅੱਗੇ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਪੁਣ ਪਾਣੀ ਬਸ ਅੰਤਰ ਮਾਏ ਚਾਰ ਗੁਣ ਦਾ ਜਿਸ ਮਾਏ ਤਿਸ ਤੇ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਠਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਭਾਵ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਸੇ ਸੁਣ ਕਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬੂ ਡੋਲੈ ਸਰਵ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲਾ ਖੇਲ ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਣੇ ਮੋਲ ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਕੀ ਜੋਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਉਤਪਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਝਣਾ ਕਪਿਕਨ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝਣਾ ਕਿਰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਣੇ ਸੁਬਚਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੈ ਰਹਿਤ ਸਤਿਭਜਨ ਸਭ ਸਭ ਕੈਦ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਚੁਕਮਾਨੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰ ਪਵ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਬਾਰ ਪਿਓ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਏ ਆਪ ਸਤ ਕਿਆ ਸਭ ਸਤ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭਤ ਸਗਲਿਤ ਪਾਤ ਤਿਸ ਭਾਵਤਾ ਕਿਰ ਵਿਸਾਰ ਤਿਸ ਭਾਵਤਾ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਅਣਕਲਾ ਲਖਣ ਜਾਏ ਜਿਸ ਭਾਵਤੀ ਲਈ ਮਿਲਾਏ ਕਮ ਨਿਰਗੁਣ ਕਹੀਏ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅੰਤਰ ਕਾ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਜਨੇ ਆਪ ਹੋਜਾਏ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨਿਆਣੇ ਵੇਖਣ ਹਾਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਕਾਤਣਾ ਆਪਨ ਜਾ ਸੇ ਆਪ ਸੁਣਾ ਆਪ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀ ਨੀਮ ਆਇਆ ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਹਿਣੇ ਕਿਣੇ ਕਛ ਕਰ ਕਲਾ ਪਲਾਉ ਗੁਰਸਨੀ ਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਹ ਜੋ ਉਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਜਿਸ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਏ ਜਣੇ ਆਵਣ ਕਹਿ ਸੋ ਆਵ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ।

संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ बागी पाए, कूट जन्म के किल विखनासे हर चरण चितलाए। औसत करो सदा प्रभु अपने जिन पूरी कल राखी, जी जंत सा भय पवित्रा सतगुरु की सत साखी। विघ्न बनासन सब दुख नासन सतगुरु नाम दृढ़ाया, खोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख घर आया। विघ्न बिनासन

उन्हें छड़िया माया सुहावड़ा तन संत्या नाम पार जिनको पूरब लिखया तिन रंग लगा करमी सत।

वै हर त्यावै तुद जी से जन जोग मैं सुखवासी से मुक्त भई जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापें जपें बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जी वड़िया वर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई उदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करै सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंढा साई जो तो पावै सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछूड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जानाए सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड पहिले निवासा पानी पावक तने किया पंकज मो पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी अले मन वेक न चेत समूढ़ मनार बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ नाहौ जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तन की शरणा जिन तू नाही विसरिया नाओ जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया रणवत नानक तन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दिहुरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम रंजाम लाग भव जल तरण कै जन मृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

अच्छा हुई ताई सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरी तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाए निहार हो, ताके ताप तन कम हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्व सके न कोई, एक बार जन तुम्हें संभारा, काल पास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो बारी। सर्व ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लियो बचाई।

दोष्ट दोकते लेहु बचाई सवैया। आए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने ओ। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक ना जाने ओ। श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखाने दोहरा।

वसावै। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हों, जिस दियां एह वड्डे आईया। कह नानक सुनो संत हो, शब्द धरू प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तकर सुभागै, खर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत उदवास कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होगा, तित कर अनहद वाजे।

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जान। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो, सत संतोख विचारू अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सधारू। जे को खावै जे को पंचै तिसका होए उधारू, ए वस्त तजी न जाई नित नित राखुर तारू। तम संसार चरण लग तरी है, सब नानक ब्रह्म पसारू। श्लोक महला पंजवा। तीरा कीता जा तो नाही मैनो जो कीतो, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पैयो। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया पौड़ी। जिथै तू समरथ जिथै कोई नाही, उथै तेरी रख अग्नि उदर माई। सुन कै जम के दूत नाही तेरा छड़ जाए, पौजल विखम सगाहु गुर शब्दी पार पाए। जिनको लगी प्यास अमृत से खाए, कल में पन गुण गोविंद गाए। सब सहनो कृपाल संभाले, साहे साहे बिरथा कोय न जाए। ए जे आवै तु दयाए। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना, जिह बा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया, दरगह पाई ठाओ। कहो नानक कृपा करे जो सुनो ये वादे, जग मौ तुम काढ़िए बिरले के महला पंजवा। रखी रखन हार आपो बारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन। हो आप दयाल मन होना विसारियन, साधना कै संग भव जल तारियन। साकत निंदक दोष्ट खन माहे बेदारियन, ते साहिब की टेक नानक मन माहे। जिस मृत सुख होए सगले दुख जाए, ते साहिब की टेक नानक मन माहे। जिस मृत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी आसरबत संगतान चरणों च बेनती है। अति सत्कारयोग पातशाह भाई हरजिंदर सिंह जी माझी आप सरबत संगतान नूं गुरमत विचारां नाल हुण निहाल करनगे। आओ उन्हां पासों गुरमत विचारां सरवण करिए जी। पातशाह भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मन ऐसी पगर कब को नाचे पांव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाओ पसारत बिनव तिल लाग तब लग मेरा मन राम समारे। वाह वाह।

0: बन आई, मेरा मन ऐसी भगत बन आई,
1: ऐसी भगत बन आई, ऐसी भगत बन आई।
0: हों हर बिन खिन पल रह ना सको,
1: हर बिन खिन पल रह ना सको,
0: हों हर बिन खिन

निरादख सख तुझ पास कहतार गुर से भी अहनस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु कै जानम मरण दुख।